द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद मुबारक दे वो आमाल दासी दी जिद अगी सवाब इंसान ता द मर्ग नपस प कबर के हम मिलावेगी यानी सदका जारिया आमाल। अवल चाता इलम खोदल, द्वहम नहर जारी कवल, द्रेम द उबो कुए जोड़वल, सलोरम वन लगवल, पिंजम जुमात जोड़वल, शपगम कुरान मजीद मीरास जोड़वल यानी कुरान मजीद चाता खोदल या कुरान मजीद अध्या कवल द चाता पारा। उवम नेक औलाद प्रे खोदल प दुनिया की चि अगा द मर्ग न पस हम ताता दुआगा ने कई औस्ताद मगफिरत दुआगा ने ग्वाड़ी।

क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए।

0: शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। से खबर कवे हबीबो हबीब असरंग शीए जोड़िए तबियती ना मिजा जीना इस मिलाओ शो कनाडा मिलाओ इस मिलाओ दा कनाडा मिलाओ ओ इशा दागा से दो यार चेकाल दे मिलाओ शी खो बेत दागा से कवे यार ची बे खबर न कवे बे दे खबर नहीं इस दा बे दंगेज ए दा से गर्दी ना हो के ची बे जाग दर पुछा कोचे चेरे लोड़ ले ओ हबीबा हबीबी अर्थाम शा चेरे लोड़ ले बे ते नहीं मना हुई है जो ओए दाले में उजे मेजे लोड़ ले यार अगे पुछे दंगे जो अगर न सो उजे मेजे से रावे हो बे मोसरा खबर न शे कवाले ए खबर चे कवे बे वे दासे कवे उता गोरा अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: स्टडाई माशे पखेर रोक ले खैर खैर याद था इलाका चा उस दरवारा से दो देखे रहा तो जी देखो शायद खान रोना वर्क शो नन में न चो ना पारी न का नो
1: सर
0: के वाड़ी का भी खबर है मान्य तब यही नशी पत्ता में कपे पी ना सब यही था
1: पे
0: दिमाग गिर भी गल कदास नारी ना

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

है खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

0: मैं गोली ना कड़े दे।
1: जी
0: ओ बुबरे आनन अगीचा पसर योर वेर गाड कड़े
1: बुबरे आनन अगीचे पसर योर वेर गाड कड़े
0: बुबरे आनन
1: अगीचे पसर योर वेर गाड कड़े
0: पचामे चे हर दोस्त शिनंग।